भैलाग प्रणाम सेवा सौंधी श्रोताओं आप सुनना चन आकाशवाणी एडलेट पर भारतीय प्रसारण का ये क्षेत्र भाषा कार्यक्रम मा उत्तराखंडी कार्यक्रम यो कार्यक्रम हमारा 5BBA रेडियो का 103.1 FM पर प्रसारित होनो छ और ये कार्यक्रम ते आप ऑनलाइन भी सुन सकदन www.5bbi.com.au पर मैं छो आपको दगड़िया विनोद बिस्ट आज की ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दो गणेश वंदना सी एथर फिर बात होली।

0: दगड़ियों, जन भारत में आपने पते छे कि मई जून जुलाई में बड़ी भयानक गर्मी पड़ते हैं, आरा बड़ी हूण भी होनी छे। ये वर्ष जो छे गर्मी ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़े लें, लेकिन आपते ई बात सी बड़ी खुशी होली कि हमारा उत्तराखंड में इन चीज़ों को ज़्यादा असर नहीं होंदु। वक्त समय से पहले मानसून भी है और बहुत सुंदर मौसम हुई छे। लोग अपनी छुट्टी बिताने का वास्ता अभी पहाड़ों पर पहुँचा था। आप भी जब भी समय मिल दो जरूर जाओ।
1: पुराणों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना रची, तब सैरी मन ख्यात का वास्ता ई धारा को भी निर्माण करेंगे। तब दिप्तों ने ब्रह्मा जी में बोली कि हे भगवान, आपन सैरी मन ख्यात खुनता पृथ्वी लोग बने आली, परंतु हमारा वास्ता भी ई धरती लोग में कोई स्थान दयावा। तब ब्रह्मा जी ने बोली कि जम्बू द्वीप में भारत वर्ष नौ को देश होलू, जयमा उत्तराखंड नामक स्थान पर आप लोग विराजला। और वास्तव में आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि का नाम से जने जाती। और यही सोची सोची की कि ई भूमि में हमन जन्म ले, हम धन धन में जाते। और गर्व से अब हुई हमारा मुख बटी निकल जान कि हम उत्तराखंडी जा।

तो मैं बात करना चाहूँ कि आप जरूर उत्तराखंड की वादियों में ये मौसम में जाओ। अगर आप वे क्षेत्र में छन तो नैनीताल जिला में एक कैंची धाम पर दो जो हमारा गुरु महाराज श्री नीम करोरी महाराज जी 1964 में बनवाई छो और वे मंदिर में धीरे धीरे विश्व का बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी और भारत का भी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी वे में अपना शीश नवाणते होन बोल 15 तारीख यख बहुत बड़ो मेलो लगदू। लगभग लाखों लोग श्रद्धा का साथ ये मंदिर में दर्शन का वास्ता होन। अगर आप भी आसपास छन तो जरूर वे मंदिर में दर्शन करो। बाबा जी का चरणों में हनुमान जी का चरणों में श्री पवन श्रोत हनुमान जी तक विराजमान रहन। प्रभु राम जख छन हनुमान वख छन राम तो जरूर आप ते कुछ न कुछ शांति वख मिली। तो अगर आप आसपास कखी छन तो वे दर्शन जरूर करो।

तगड़ियों कार्यक्रम आप सुनना छन आकाशवाणी एडलेट पर। यू भारतीय प्रसारण का क्षेत्र भाषा कार्यक्रम उत्तराखंडी कार्यक्रम प्रसारित होनो छ 5BBA रेडियो का 103.1 FM पर। ये कार्यक्रम ते आप ऑनलाइन भी सुन सकदन www.5bbi.com.au पर। तो बनिया रहो ये कार्यक्रम मेरी दगड़ी यानी विनोद बिस्की दगड़ी।

दगड़ियों, हमारी जो यह उत्तराखंडी संस्कृति छ, वह गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा और संस्कृति को मिश्रण छ, ये माँ हम अफूतें गौरवान्वित महसूस करदा कि हम अपनी संस्कृति ते ये देश में भी प्रचारित और प्रसारित करना चाहो। तो ये एक संस्था भी छे शहर में, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। आप चौन तो इन संस्था से भी जुड़ सकदन और अपनी संस्कृति का बारे में जो भी आपको ज्ञान रंदो, आपका जो भी योगदान छ वो दी सकदन। तो दगड़ियों, जन मैं बात करनू छो कैंची धाम की, नैनीताल में जो पूज्य गुरुदेव नीम करोरी महाराज को तपस्थली छे, तो वह भी 15 तारीख जो कार्यक्रम होनु छे वहीं तर्ज पर हम ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग मिली थे। गुरु महाराज नीम करोरी धाम ऑस्ट्रेलिया की संस्था हर वर्ष ये कार्यक्रम मनाती, ऐसो 16 जून को ये कार्यक्रम का आयोजन होनु छे, जय मां सुंदर कांड की व्यवस्था रखेगी, प्रसाद वितरित होलो और भजन संध्या होली। तो आप भी मंगलवार 16 जून भूलना, और ये को पता आप ते संपर्क 04303232 पर मिल जालू, अगर आप श्रद्धा रखदन श्री गुरु महाराज नीम करोरी जी पर, हनुमान जी पर, तो जरूर ये कार्यक्रम में सम्मिलित वान।

ये कार्यक्रम आप सुनना चन आकाशवाणी एडलेट पर भारतीय प्रसारण का क्षेत्र भाषा कार्यक्रम मेरी यानी विनोद बिस्क की दगड़ी दगड़ियों ये कार्यक्रम ते आप एथर भी ट्यून कर सकदन www.5vbi.com.au पर। अब समय होनो छ आपसे इजाजत लेने को। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात हो रही। पहला प्रणाम श्योली।